अज का है 22 नवंबर 1998 का दिन गुरु नानक नाम लेवा गुरु सिख संगत वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है जिस दिन अमृत के दाते सरबंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन चरण कमलों के कौतकों राही पवित्र हुई इस धरती से गुरु खालसा पंथ के 300 साल साजना दिवस की स्वयमान परी याद में सदीवी बनाने लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती नू 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद विच चक माता नानकी का नाम दिता। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र के गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नू अपने दर ते आए कश्मीरी पंडितां दी बेनती ते समुची मानवता ते विशेष करके हिंदुस्तान वासियां दी धार्मिक सभ्याचार अते

रोंदे नूं नहीं थक सकदा। जिहड़ा गुरु दा सिख है बां फड़ लैंदा, अपने शरीर ते भावे दुख सहना पै जावे, शरीर ते कष्ट जर सकदा है, पर दुखीए दा दुख निवृत्त कर देंदा। भाई कमलीए वर्गा राजे दा वजीर वजीर खां कोड़ी हो गया, ऐसा दुख लग गया, राजे ने भी शहर तो बाहर कढ दिता है, पर भाई कमलिया बंदगी करने वाला नाम जपण वाला सुखमनी साहब का पाठ करता जाता। वजीर खां दे कन्नां विच जदों बाणी पई तन मन ठंडा होया, आवाज मारी ओ सिखा अकीदी कलाम पढ़दा, आ बाणी सुनदिया मेरा तन मन ठंडा हो गया। ते भाई कमलिया परपकारी कोल बह के सुखमनी साहब का पाठ सुनाया, फिर इथों तक अपने मोढ़िया ते चुक के गुरु अर्जन देव पातशाह दे दरबार में लिया के दुख दूर कर दिता है। भाई कमलिए ने ऐसा परपकारी ओ कोड़ी वजीर खान वर्गे जिन्हां दा शरीर कंचन वर्गा कर दिता, फड़ लई बां दुख दूर कर दिता। पर आओ भाई सिखां दा तां प्यार ही इहो जिहा, भावना ही इहो जिही, हिरदे विच परपकार दा बीज बोया हुंदा है, इस वास्ते बां फड़ लईए। दुखियां दा दुख नहीं हो जरदे, रुड़दे जांदे दी बां फड़दे, पर मुख तो सत नाम जप के वाहिगुरु वाहिगुरु कह के फिर भी मन नीवा मत उची। आओ भाई सिखा का, पर जेड़ा सिख बन जावे भेखी सिख नहीं, विखावे वाला सिख नहीं, जेड़ा अथिक अंदरों सिख है, जिदे हिरदे विचों प्यार है, बस वो प्रगट ही नहीं करता। वो तो कहिंदा ही नहीं, वो तो कहिंदा मैं अजे सिख बनिया ही नहीं, क्योंकि गुरु का मार्ग ही ऐसा है, गुरु के पाए हुए पूर्णिया ते जेड़ा सिख चलता है, बस वो तो मन नीवा मत उची, कि जिन्हां ते गुरु बख्शिश कर दे।

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना। ए पूर्ण सिख दी निशानी, ए पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे, आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए। तन मन धन दा मान।

ये नहीं पता कि शैतान गुरु अर्जुन देव पाछा बचन कह रहे खूह विच खलोतिया कह लगे ओ सिखा जे मेरे नाल प्यार है मैनू बाहर कढ़ना चाहुंदा है ते फिर कृपा कर आ गुरु दे लंगर दियां लकड़ां पहला लकड़ां नू बाहर कढ़ दे फिर मैं भी बाहर आ जावांगा किते सेवा ना व्यर्थ चली जावे इस वास्ते ते लकड़ां चुकी खलोता किते लकड़ां गिलियां ही ना हो जाए अज दी सेवा व्यर्थ ना हो जावे जदों भाई माध जी ने कहा ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा फिर मन भरिया कहन लगे ओ भाई गुरदास आ वेखे आ मेरे प्यार वाले सिख हन आ रूप है सिख दा जिन्हां दे हिरदे विच भावना है जिन्हां दे हिरदे विच प्यार है क्यों ना मैं ऐसे सिखां तो वारी जावां क्यों ना ऐसे सिखां तो कुर्बान जावां जेड़े मेरे तो कुर्बान हो जांदे गुरु तो अपना आप निशावर कर जांदे इन परवाह नहीं करदे ओ भाई मांझ ते इम्तिहान दा परचा तां पिया पर भाई मांझ इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया भावी ने से ऐसी खेल खेडी है पर हुण भाई मांझ उस इम्तिहान दे परचे विचों पास होके विखाया।

पांड आपसे डिग पे पर पांड नहीं सके। गुरु अर्जन देव बादशाह ने पहला लकड़ा नु बार कटे, फिर रस्से नाल पाई मांझ नु जदों बार कटिया ते गलवकड़ी विच लै लिया। इतना घुट के प्यार कीता, इतना प्यार कीता ते गुरु पातशाह ने फिर वार भी दे दिता। मंझ गुरु का गुरमंझ प्यारा,

फिर भाई मंझ नू मंजी बख्शिश की थी। भाई मंझ जिन्हां ने सतगुरु नू सेवा करके प्यार करके अपना आप गुरु तो निशावर करके पा लिया, आओ भाई आपां भी जे गुरु दे सिख हां ते फिर भाई मंझ वांगू किते गुरु नाल प्यार कर लईए, गुरु तो वारी हो जाइए, ताई का गुरु बख्शिश करेगा। किते मन नीवा हो जावे, मत उची हो जावे, एहो जा हिरदे विच प्यार जाग पवे ते फिर भाई गुरु तो सदके गुरु भी बख्शिश करेगा, ओ सिख नूं गल नाल ला लवेगा। आओ भाई मंझ दे गीत गा रहे हां, डिग पया पर पंड ना सुट्टी, खड़ा अडोल ओ सिर ते रखी, सतगुर आए बचा। आओ वे सतगुरां ने बांह फड़ ली, बख्शिश कर दिती। जे भाई मंझ ते बख्शिश हो गई, आओ भाई ते साडे ते भी बख्शिश हो जावे, किते आपां भी भाई मंझ वांगू गुरु की सेवा विच लग जाइए ते फिर साडा लोक सुखी।

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाईयां, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितरे नहीं मिलदा। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्हां चिरे महसूस होवे समझ लैणा नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदों रोमां विचों अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों श्वासां विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुणदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इस शब्द आपां पढ़ रहे हां ना साहिब अंत कहने ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, यह किवें हो सकता। वो एक अवस्था है, कोई उसनू अनहद नार की गल करता है, कोई उसनू इलाही नार की गल कह के करता है, कोई किसी ढंग नाल दसता है। लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरू हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त की आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। तिना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इहदी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरिया बच्चिया वल वेख के इहनां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने। कईआं बच्चिया दे अंदर शौक पैदा करता जांदा है, बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़ियां तरक्कियां करेगा, उह चा लै के तुरदा। नहीं तां आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिआ बहुते तां रोंदे भी वेखेगा, उहनूं इक वारी धक्के नाल स्कूल पहुंचाउणा पैंदा, उत्थे जा के बहिंदा, इक तां जकड़ के बहिणा बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाते ने उसकी समझ तो बाहर आता है, वो पहला पहला बड़े परेशान होता है। पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर है वो बोझ जापते, लेकिन चार दिन बाद वो जिहड़ा बोझ है वो ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते। उन्हें अखर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना लवे उसकी मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धति की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापता है, नितनेम भी बोझ जापता है, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापते। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह उह बेनती कीती है भी स्कूल च जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, वरिया पति पंद्रह पंद्रह वीह वीह वरे बोझ ही धोते ने, पढ़ते भी किताबां नाल मत्था मारदे भी, रोंदे दुखी होंदे, कई बारी वह फेल हो जाते ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो बशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदा, शौक नाल नहीं पढ़ते। ते फिर उनके माता पिता और आला दुआला कहते पढ़ता तो हैगा, पढ़ता कहदा है बगार कसदा, तू कसीट के तुरै आ रसे पढ़ने वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साड़ी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਦਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬ।

आख्या अब कलू आयो रे आयो एक नाम बोवो बो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने नाम दा छटा दे के सारे जगत नु शांत कीता, सच दे नाल जोड़िया। आख्या एथे ओथे जिथे किथे तेरा नाम सहाई होवेगा। इसलिए भाई आखर ता इस शरीर ने एक दिन जाना है ना, ते ऐसा ना होवे तू जदो आया से तेरे को श्वासा दी पूंजी सी, इना श्वासा दी पूंजी दे नाल तू वणज करके जाना है नाम दा। ते हजूर कहंदे ने भाई कुछ पल्ले बन लेगा सत संगत दियां घड़ियां, पल्ले बन लेगा नितनेम, ते फिर जिथे जावेगा तेरा आदर होवेगा। रे रे दरगह कहे ना को, आओ बैठ आदर सब देव, इसलिए पल्ले बन ले। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ए धारना बड़े प्यार नाल सुनिया करदे सन, पढ़ाया करदे सन साध संगत। तुसी भी बोलो भाई, ते जदों सारी संगत मिल के बोलदी है गुरु नानक आप भी बोलदा है, इसलिए पल्ले बन ले।

और इन्हां ने हिंदुस्तान दे लोकां ते बड़े जुलम भी कीते और हिंदुस्तान दे लोग एक गुलाम सन मुगलां दे, दूसरा जातां पातां विच ऊंच नीच विच वंडे हुए सन। इस करके इन्हां दे विच एका नहीं सी। ब्राह्मणां दा बहना उठना वखरा, शूद्रां दा बहना उठना वखरा। जिस वक्त औरंगजेब दा राज हिंदुस्तान ते होया ता इसने ए ऐलान कीता कि हिंदुस्तान दे विच इको ही धर्म रहेगा और वो है इस्लाम धर्म। औरंगजेब ने हिंदुओं नु जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कीता, मंदिर तोड़ने शुरू कीते। उस वेले कश्मीर के ब्राह्मण श्री आनंदपुर साहब पहुंचे। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार में इन्होंने बेनती की।

पंजा ने अमृत छका के जाता पाता ऊंच नीच खत्म करके एक नाम दिता सिंह खालसा। ते खालसे दा मतलब है खालस, जिदे विच कोई ऊंच नीच नहीं, परम नहीं, वहम नहीं, पखंड नहीं। एक खालसा नाम दिता, पर नाल कुछ गल्ला भी कही। खालसा कौन है? खालसे विच की खासियत होनी चाहिए है? जे एक खालसे विच सारियां गल्ला ने ताहों खालसा है, ते ओ गल्ला गुरु साहिब जी

मैं देखना है ए हरि सिंह नलुआ कौन है जिन्हें पठाना दी धरती ते आके कब्जा किया, क्योंकि पठाना नू अज तक कोई हरा नहीं सकया। ए सुन के गुल खान कहन लगा, बानो मैं तेनू नहीं जान देना, पराई कौम दा सरदार है ते पराई

अगर मेरा कोई पुत्र होवे तो बिल्कुल हरी सिंह नलवे वर्गा होवे। सिंह साहब ने फिर कहा, बानो शकलों में की है, पुत्र किसे भी धर्म का होवे, किसे भी मजहब का, उसकी कहो जी भी शकल होवे, नेक होना चाहिए। बानो कहन लगी, नहीं तुहाडे वर्गा पुत्र चाहिए, तुसी मेरे नाल निकाह करा लो, व्याह करा लो। उस वेले हरी सिंह जी उठ के खड़े हो गए, गुस्से नाल अखां लाल हो गई, कहन लगे, बानो जा, चली जा, तू मैनू डेगण आई है, साडे गुरु दा हुक्म है, एका नारी जती होए पर नारी ती भैन बखान। जद ए गल कही, बानो वापस मुड़ी, पर वापस मुड़दी ने इकता ना मारे। कहन लगी, हरी सिंह मैं सुने है कि गुरु दे घरों कोई खाली कदी नहीं मुड़े, ये भी सुने है कि सिख दे घरों भी कदी कोई खाली नहीं मुड़िया, अज ये गल झूठ हो गई है, मैं सिख दे घरों खाली मुड़ चली। ताना मारे है। हरी सिंह कहन लगी, बानो ठहर जा, गुरु दा घर उथों ते कदी कोई खाली नहीं गया, गुरु दा जिहड़ा सिख है उहदे घरों भी कदी कोई खाली नहीं गया। पहरेदार सिंह नूं आवाज मारी, पहरेदार अंदर आया, हरी सिंह जी कहन लगे, जा सिखा, दूसरे तंबू विचों कीमती शॉल

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए की

तेरे जेने गुण ने तू इनी बाणी पढ़ता है, शस्त्र विद्या भी सिखदा पे, गुरबाणी भी विद्या भी सिखदा पे। एक गल दस, संगत दे झूठे कौले क्यों मांज रहे हैं? क्यों मांज रहे? ध्यान देना, ये बड़ी गुण जड़ा ना, ये माधो साधु जन।